अभी मैं जो गीत गाने जा रहा हूं वो स्वामी को बहुत अच्छा लगता था। पहली बार मैंने 70th बर्थडे पे उनके गाया था तो बहुत बहुत खुश हुए थे, तो वही गाना मैं पेश कर रहा हूं। ये गाना उनके चरणों में मैं समर्पित करता हूं।

पाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिय भवजल संसारो, त्रै सत अंगल वाई कहिए, तिस कहो कमने आधारो, बोले खिले असर होवे, क्यों कर लख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागे, कर नदरी मेल मिलाए, आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाए। सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अगल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों परम गवाए, तन मन निर्मल निर्मल बाणी, ना मोह मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरिया, इत उत एको जाने, चिन्ह वरण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाण। त्रै सत अंगल वाई अवधू, सुन सच आहारो, गुरमुख बोले तत् बिरोले, चीने लख अपारो। त्रै गुण मेटे शब्द वसाए, ता मन चूके अहंकारो, अंतर बाहर एको जाने, ता हर नाम लगे प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझे, जा आपे लख लखाए, नानक तेह ते उपर साचा, सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथिया ले, पवन कहां रस खाई, ज्ञान की मुद्रा कमने अवधू, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवे अवधू, हो मैं प्यास ना जाई, शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित आसर रही है, कित भोजन तृप्ता सै, नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल नंग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जर बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रह, तव नानक आत्म राम कौल है। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अग्न निवारी, अप्यो पियो आत्म सुखतारी। सच आराध्या गुरमुख तरतारी, नानक बूझै को विचारी। एहो मन मैंगल कहां बसिया ले, कहां बसै एहो पवना, कहां बसै सो शब्द अवधू। ता को चूकै मन का पवना, नदर करे ता सतगुर मेले, तानी कर वासा एहो मन पाए, आपै आप खाए ता निर्मल होवै। तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों संस्कार सूर समावै। गुरमुख हो मैं विचों खोवै, तव नानक सहि समावै। एहो मन निहचल हिरदै वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोज तत् लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्रिपवन ज्योत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की, साचे ही त्रिपतास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी, विरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुपाखै, सच रपै रंग कबहू ना जावै। जा एहो हिरदा देह ना होती, तौ मन कैठै रहता। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर सहिता। रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई। रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई। वर्ण भेख असरूप ना जापी, क्यों कर जाप साचा, नानक नाम रते बैरागी। इब तब साचो साचा, हिरदा देह ना होती अवधू, तव मन सुन रह बैरागी। नाभ कमल अस्थंभ ना हो तो, ता निज घर बसतो पवन अनुरागी। रूप ना रेखिया जात ना होती, तव अकलीन रहतो शब्द सोसार। गौन गगन जब तबै ना होतो, त्रिपवन ज्योत आपे निरंकार।
ਵਰਨ ਭੇਖ ਅਸਰੂਪ ਸੋ ਏਕੋ ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਡਾਣੀ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਸੂਚਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁਖ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿ ਲਾਏ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੋਗ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੈ ਦੇਖ ਹੁਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਪੀਜੈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਜੈ ਕੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਹਾਂ ਗਰਭ ਗੁਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਗੁਰਮੁਵਾ ਜਨਮ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਜੀਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰਤਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜਮਕਾਲ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਰ ਗੈ ਨਾ ਆਵੈ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ

0: तंदा तावत दिन गया रैन गवाई सोए कूड़ बोल बिख खाया मन मुख चलिया रोए सिरै उपर जमडंड है दूजे पाए पत खोए हर नाम कदे ना चेते हो फिर आवन जाना होए गुरप्रसादी हर मन वसै जमडंड ना लागे कोए नानक से जे मिल रहे कर्म प्राप्त होए पौड़ी एक अपनी सिफती लाया नो दे सतगुर मत्ती एक नानो नाओ बख्शियो नो अस्त्र हर सती पौन पानी बै संतरो हुक्म करह भगती ए नानो पव अगला पूरी बनत बनती सब एको हुक्म वरतदा मन्या सुख पाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक कबीर कसौटी राम की झूठा टकै ना कोए राम कसौटी सो सह जो मर्जी वाह होए महला तीजा क्यों कर एहो मन मारी है क्यों कर मृतक होए कहया शब्द मान नहीं हों मैं छड़े ना कोए गुरप्रसादी हों मैं छुट्टै जीवन मुक्त सो होए नानक जिसनो बख्से तिस मिलै तिस बिघन ना लागे कोए महला तीजा जीवत मरना सब को कह जीवन मुक्त क्यों होए पह का संजम जे करे दारू पाओ लाए आन दिन गुण गावे सुख सहजे बिख पवजल नाम तरे नानक गुरमुख पाई है जां को नदर करे पौड़ी दूजा पाओ रिचाए उन त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय अन हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझे बिचारा सब किश तेरा खेल है सत सिरजनहारा जिस पावै तिस बख्श लहै सच शब्द समाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै माया नो फिरै तपा सदावै परमे पूला सब तीर्थ गह ओह तपा कैसे परम गत लहै गुरप्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मोखंतर पावै महला तीजा सो तपा जे हो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले सतगुर की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन गुरमति कट चानना अनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वाण त्रिण सब किश आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।
1: You have just listened to a recital from the Guru Granth Sahib. We now offer you two nasheeds, Islamic devotional songs which employ only the human voice.